हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: You were listening to vocal recital by Shri Ayyappaya Halagali Math. He was accompanied on tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and harmonium by Shri Shukru Saab Mulla. Continuing the concert, now listen to vocal recital by Shrimati Neelayam Kodli. Rag, Miyaa Ki Todi, Vilambit Teen Taal, Sab Ni Sab.
1: आप सुन रहे थे श्री अय्यप्पया हलगली मठ का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर, हारमोनियम पर श्री शुक्रु साहब मुल्ला साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे श्रीमती नीला एम कोडली का गायन, राग मियाँ की तोड़ी, ख्याल विलंबित तीन ताल, सबनी सब।

0: You were listening to vocal recital by Shrimati Neelayam Kodli. She was accompanied on tabla by Shri Allam Prabhu Kadkol and on harmonium by Shri D. Kumar Das. This program was contributed by Akashwani Dharwad, Anytime Indian Music.
1: अब तक आप सुन रहे थे श्रीमती नीला यम कोडली का हिंदुस्तानी गायन. आपके साथ तबले पर श्री अलम प्रभु कड़कोड़ और हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे थे. यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा 24x7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक पर पेश किया गया.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग जोग पर ध्रुपद. कलाकार हैं संचिता चौधरी. आपके साथ पखवास पर हैं प्रबाल नाथ. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जोग पर ध्रुपद. कलाकार हैं संचिता चौधरी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani vocal recitals. Listen first to Dhrupad in the rag Jog. Our artist this evening is Sanchita Chaudhuri. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Probal Nath. Listen now to Dhrupad in the rag Jog. Our artist Sanchita Chaudhuri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग पर ध्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थी संचिता चौधरी। आपके साथ पखवास पर थे प्रभाल नाथ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर ध्रुपद। कलाकार हैं संचिता चौधरी। आपके साथ पखवास पर संगी हैं प्रभाल नाथ। तो लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर ध्रुपद। कलाकार हैं संचिता चौधरी।
1: You were listening to Dhrupad in the Raag Jog. Our artist was Sanchita Chaudhuri. Accompanying our artist on the Pakhavaj was Prabal Na. This is Raagam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, our artist this evening, Sanchita Chaudhuri, now presents Dhrupad in the Raag Darbari Kannada. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Prabal Nath. Listen now to Dhrupad in the Raag Darbari Kannada. Our artist, Sanchita Chaudhuri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग दरबारी कर्नाड़ा पर ध्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थी संचिता चौधरी। आपके साथ पखवास पर थे प्रवाल नाथ। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू ध्रुपद इन द राग दरबारी कन्नड़ा। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग वाज संचिता चौधरी। अकॉम्पनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द पखावज वाज प्रवाल नाथ। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बांसुरी वादन. कलाकार हैं पंडित रूपक कुलकर्णी. सर्वप्रथम आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मारवा. विलंबित और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है.
2: लिसन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित रूपक कुलकर्णी प्रेजेंटिंग राग मारवा विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू एक ताल.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। पंडित रूपक कुलकर्णी से बांसुरी पर आप सुन रहे थे राग मारवा। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित रूपक कुलकर्णी प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन, जिसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़ झाला। मध्यलयगत मत ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू राग मारवा ऑन फ्लूट बाय पंडित रूपक कुलकर्णी। Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhoot Phadke. Continuing the concert,

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित रूपक कुलकर्णी का बांसुरी वादन। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल by Pandit Rupak Kulkarni. Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhut Fadke. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरों में आला और जोड़. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now hear a sitar recital by Gulam Dastagir Khan. He begins his recital with an alap and jod in rag Bhairav. The vilambit and drutgat are set to teen tal. He is accompanied the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard a rendition in राग भैरव on the सितार by गुलाम दस्तगीर खां। He now presents राग शुद्ध सारंग। The विलंब and द्रुतगत are set to तीन ताल।

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग शुद्ध सारंग परफॉर्म्ड बाय गुलाम दस्तगीर खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

గద ధనిని బాబ మగ సమ్మగ మగ నిబధనిద బాధనిదగా మగ ధని బా మగ సమ్మగ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम DTH चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. आइए सुने पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी वादन. प्रस्तुत है राग पूरिया. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: रागम 24/7 DTH Anytime Indian Music. Listen to Hindustani Classical Flute Recital by Pandit Nityanand Haldipur. Presenting Rag Puriya, Vilambit Gat set to Ektal and Drut Gat set to Teental.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग पूरिया सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सदानंद नायमपल्ली। अब सुनिए पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत, मध्यलय गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You're listening to Rag Puriya by Pandit Nityanand Haldipur on flute. Accompanying him on tabla was Pandit Sadanand Nayampally. Continuing the concert, now listen to Rag Hemant on flute by Pandit Nityanand Haldipur. Madhyalaygat set to Jhaptal, Drutgat set to Teental.

0: अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे ओंकार गुलवाड़ी। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वाज ओंकार गुलवाड़ी। This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मारू बिहाग और राग रागेश्री में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं यज्ञसेनी मजूमदार. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं बाबू वर्धन. यज्ञसेनी मजूमदार अपने गायन का आरंभ राग मारू बिहाग में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में ख्याल, कलाकार यज्ञसेनी मजूमदार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital. Listen to Khayal in the rag Maru Behag. Our artist this evening is Yagnaseni Mazumdar. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar and on the harmonium is Babu Bardhan. Listen now to Khayal in the rag Maru Behag, our artist, Yagnaseni Mazumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी यज्ञसेनी मजुमदार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे बाबू वर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग रागेश्री। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग वाज यज्ञसेनी मजुमदार। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज देवाशीष सरकार एंड ऑन द हारमोनियम वाज बाबू वर्धन। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है ऋषिकेश गांगुटे का गाया राग नटभैरव. विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल है कम करो तुम मो पे साई. और द्रुत बंदिश तीन ताल पे निबद्ध है जिसके बोल है रब साच तेरा जन्म आधार. सारंगी पर आपके साथ संग कर रहे हैं उस्ताद नसीर खान और तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं राग नटभैरव ऋषिकेश गांगुडी की आवाज में. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुडी. ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग नटभैरव. बोथ द कॉम्पोजिशंस विलंबित एंड द्रुत आर सेट इन तीन ताल. अकॉम्पनिंग हिम ऑन सारंगी उस्ताद नसीर हुसैन खां एंड ऑन तबला शीतल प्रसाद मिश्र.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरद भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुडे का गाया राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पे संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खां और तबले पर संगति दे रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। You were listening Raag Nat Bhairav by Rishikesh Gangude. Now, he is presenting Raag Shuddha Kalyan, Vilambit and Drut, set in Tintal. Accompanying him on Sarangi, Ustad Nasir Kha, and on Tabla, Sheetal Prasad Mishra.

अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुर्डे का गाया राग शुद्ध कल्याण। यह है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग ऋषिकेश गांगुर्डे ऑन राग शुद्ध कल्याण। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार है सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारंगी पर समत खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय स्माइल दद्दू खां on the tabla and Samad Khan on the sarangi.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी, यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी. विलंबित गत छप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्ण. द विलंबित गत इज सेट टू झप ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल. ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला.

Thank you.

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्ण। वी नाउ प्रेजेंट राग श्याम कल्याण। द विलंबित एंड द्रुतगत इज

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग श्याम कल्याण बाय पंडित गोपाल कृष्णा। ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं आर आर पांचाल के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे आर पांचाल के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अब सुनते हैं समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना, जिसे गाया है रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार ने। संगीतकार है आनंद मोड़क।

रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार के स्वर में आप सुन रहे थे समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना। संगीत था आनंद मोड़क का। आइए आप सुनते हैं पंडित राव नगरकर के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना।

संत तुलसीदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे पंडित राम नगरकर के स्वर में। आइए आप सुनते हैं संत मीराबाई की रचना सुधा मल्होत्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के स्वर में संत मीराबाई की रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी बबन राव नावड़ीकर के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत एकनाथ महाराज की, स्वर है मालती पांडे का।

शरद जांबेकर ने गाई। संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। आइए आप सुनते हैं रेखा रायरी कर के स्वर में संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे रेखा रायरी करके स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है फिर से एक बार संत एकनाथ महाराज की वसंतराव देशपांडे के स्वर में। संगीत दिया है डीवी करंदीकर ने।